0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी वाली. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

0: तेरा
1: केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शारजील।

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800-JUGASTA now. Jugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब FM 105.4 पर

बॉलीवुड का मसाला दुबई की मस्ती, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: गुड मॉर्निंग, फाइनली आ गए मंडे, 5th of May, 4th of May, भाई शो करा मैड मॉर्निंग्स ऑन YFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE, मैं हूं शर्जील, 6:39 ऑन द क्लॉक, भाई मंडे का दिन है, एंड मंडे का दिन जब आ रहा है ना भाई, ये मंडे की खुशी जो होती है ना, ये हमेशा जिंदगी से ना कभी जानी नहीं चाहिए, बिकॉज नो मैटर वॉट हैपन्स, योर मंडे इज सपोज टू बी Monday, because Monday, you know, at the end of the day, it doesn't matter what day of the week it is the time of your music and apni masti, apni khushi jo hai na, aap hamesha zahir kar sakte ho after what you've done in life. And aaj jo hai Monday, after a very amazing long weekend, aapka swagat hai to the maddest and the longest and the biggest and the best. आपको मिलता है म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, गॉसिप, बातचीत, चलते हर चीज, सबको सब मिलेगा आपको, जस्ट टू मेक श्योर दैट योर डे गोज वेरी वेरी वेल. अगर आपके पास अपना दिन जो है ना उसको गुजारने के लिए बहुत अच्छा प्लान है, यू आर द पर्सन विद द प्लान, डू लेट मी नो 0508791054 पे. आज जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटायर वीकेंड एंड द स्टार्ट ऑफ द मंथ. हाँ, फ्रेश मंडे है ना, तो उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, हाउ योर मंडे कैन बी मंडेइंग, डू लेट मी नो हाउ यू कैन मेक माय मंडे मंडे एज वेल. भाई ये क्या बोल दिया मैंने, मंडे मंडे होता है, जो भी होता है, इट डजंट मैटर, इट इज टाइम फॉर म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन YFM 105.4. तब तक के लिए मैं आपको रखूंगा कंपनी, हैव अ वेरी वेरी गुड डे एंड गुड मॉर्निंग.
1: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग. YFM 105.4, the UAE's number one desi music station.
0: Well, Monday का दिन है, नया दिन शुरू हो रहा है, नया महीना, नई मुसीबत, क्या क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, बट आज जो है आपको बहुत ज्यादा चीज मिलने वाला है. तब तक के लिए प्यार कर रहे हैं अगर तो करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तरबूज नहीं, जो भी है कटता तो जरूर है. 6:41, गुड मॉर्निंग, मैं हूं शर्जील, हैव अ गुड डे.

0: बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
0: एनर्जी बोले
2: वाइब एफएम 105.4।

0: From the movie Durandal, Jasmine Sandals, Rebel, आपके लिए मैं और तू। ये वो वाले होते हैं ना भाई, जो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे मिलके अलग ही प्लान बनाते हैं, मैं और तू। हाँ भाई, अलग ही हो जाता है। शुक्र है मैड मॉर्निंग्स ऑन वाई एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई। मैं हूं शर्जील। अगर सुबह सुबह की बात कर रहे हैं तो भाई क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों? देखो, सन्नाटा होता नहीं है, सन्नाटा बनाया जाता है ना। अगर आपने सन्नाटा बनाया अपने आसपास, तो फिर सन्नाटे को करिए दूर, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेगा एक अमेजिंग अमेजिंग वाइब। एंड हम लोग जो है सुबह सुबह जो है ना तीन मसलों के बारे में बात करेंगे, विच इज वन वेरी तीखा, वन वेरी मीठा, एक तो भाई अलग ही लेवल पे चला जाएगा। देयर इज सो मच विच इज हैपेंड ओवर द वीकेंड। क्या क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज द देसी ट्विटर ना उसका दिल टूट चुका है। CSK एंड MI उन लोग का भी थोड़ा सा एक्शन चल रहा है। और AI ने UAE में पहली बार वर्क परमिट अप्रूव किया। ये सब कैसे? Onion सुबह का मसाला,
1: थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची और फुल ऑन ड्रामा, बस वही है सुबह का मसाला विद शर्जील।
0: देखिए सुबह के मसाला, सो ये सबसे पहला द तीखा वाला, इसको हम लोग शुरू करते हैं विद जैन मालिक। जैन मालिक इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सिंगर्स जिसको हम लोगों ने सुना हुआ है बहुत बार। एंड वी एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे नो मैटर व्हाट, सब किसी को ना उनका जो है ना एक प्यार पड़ जाता है उनके साथ। एंड जैन ने जो है इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनका जो US टूर जो था वो कैंसिल हो गया है। एंड उनका जो नया एल्बम जो था जिसमें एक नया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन्फ्लुएंस यूज़ किया था उन्होंने, हाँ वो भी जो है अभी डिले हो गया। बट हाँ, सब शोज़ कैंसिल करने के बाद 32 शोज़ सिर्फ 9 उनके जो है रह गई हैं, क्योंकि उनके जो है हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो गए थे। एंड हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें ना, जब दिल एक बीट स्किप करता है, हाँ वही बीट जो है हमेशा ज़रूरी पड़ जाता है, तो फिर ये जो है इसके बारे में चलो इट्स ओके, वी विल हैव हिज टूर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद अगर देखा जाए तो देसी कम्युनिटी का जो रिएक्शन आता है ना, इसमें दो तरीके के आते हैं। एक होता है भाई गेट वेल सून, दैट इज द जेन्युइन लव, हाँ वो वाइट वाला हार्ट डाल के। बट टाइप बी, इसका बहुत सारे अलग लोग होते हैं जो बोलते हैं यार ये कोंकणल नाम रखना जरूरी था क्या, इंडियन फैंस को समझ में नहीं आएगा, एंड ये हुक जो है क्या चीज़ का है जैन भाई, विच इज ऑल्सो वैलिड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। बट उनकी एल्बम जो है ना द कोनाकोल, सही है, ये जो है देसी ऑडियंसेस के लिए इट इज जस्ट लाइक अ वेरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट विच कम्स इन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे म्यूजिक जो है कहीं कभी हो इट इज दैट वन कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग दैट यू ऑलवेज रिक्वायर इन योर लाइफ। एंड UK की डेट जो है उनके आ गए हैं, बट देर आर सो मेनी वेज ही इज गोना बी कमिंग इन वेरी वेरी सून। एंड अगर हम लोग चले मसाला नंबर दो की तरफ, ये जो है इट इज द IPL वीकेंड। भाई साहब, CSK ने मुंबई को फिर हराया, फिर दूसरी बार सीजन में, मतलब ऋतुराज गायकवाड 67 नॉट आउट, कार्तिक शर्मा जो है 54 पे गए, मुंबई इंडियंस से 159 करे, टारगेट क्या था, मतलब सोचिए CSK ने फिर भी इसको 8 विकेट से जीत लिया, मतलब मुंबई इंडियंस हार्दिक पांडे की टीम से तो प्ले ऑफ के इतने करीब होते हुए भी इतनी दूर हो गए, प्रैक्टिकली एलिमिनेटेड फील हो रहा है ना, वो ना जो फीलिंग मेरी उन्होंने कि हाँ बस खत्म हो गया। एंड बुमराह, द बुमराह हैज फाइनली टेकन वन विकेट। सूर्य कुमार यादव का भी स्ट्रगल हम लोगों ने देखा, एवरेज जो है आज भी उनका 10 पे ही चल रहा है। बट हाँ, ये बुमराह ने जो है ना 25 करोड़ से भी ज़्यादा जो है ना, मतलब एक अलग तरीके से ना उन्होंने एक पूरा सीज़न परफॉर्म किया। लेकिन वो बैड लक जो है ना हर किसी का होता है, लेकिन मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे भी मालूम है कि बैड लक जब चलता है कि कितना लंबा चल सकता है। एंड वो एक गेम ज़रूरी होता है जस्ट टू मेक श्योर कि हर चीज़ जो है ना आपकी लाइफ में वो एक फ्लिप आ जाए। एंड अगर हम लोग बात करें ये KKR एंड सनराइज़र हैदराबाद को जब हराया तो उन्होंने, KKR के लिए दूसरी जीत थी इस सीज़न की, मतलब इतना स्लो रिकवर कर रहे हैं कि रिंकू सिंह भी इज़ कमिंग बैक ऑल ओवर अगेन। वेल, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम व्हेन कम्स टू स्पोर्ट्स, कभी भी कुछ भी कहीं से भी कैसे भी बदल सकता है। एंड मसला नंबर तीन जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, UAE में AI वर्क परमिट जो है अभी अप्रूव करने वाले हैं। एंड वंस दोज अप्रूवल्स कम इन, इट इज़ गोना बी वेरी टफ फॉर एवरीवन। नहीं, AI से आपको जो है ना वर्क परमिट निकलना इज गोना बी द ईजीएस्ट थिंग, बिकॉज वो जो है ना पहले जब इंतज़ार करना पड़ता था, नाउ दैट वेट इज़ गोना गेट ओवर वेरी वेरी सून, बिकॉज मे से UAE फेडरल अथॉरिटी जो है ना उन्होंने बताया कि AI एंड रोबोटिक्स वर्क बेस्ड परमिट्स एंड द असेसमेंट सिस्टम इज गोना बी coming in very very soon, and it's going to be a partnership with the Ministry of Human Resource. And bhai iska wait kon kon nahi karega, because sochiye aapka AI ka परमिट जो है ना जब निकलेगा तो आपका कॉल टू एक्शन जो है एकदम एक्चुअली ऐसा लगेगा कि यार मेरी जॉब जो है आराम से आ जाएगी। एंड इट इज दैट AI पे भरोसा जो हम लोग को कभी भी भारी नहीं पड़ेगा।
1: बॉलीवुड का तड़का, UAE का प्यार, बस यही मिलेगा YBFM 105.4, number one desi music station in UAE.
0: हर रात के बाद सवेरा होता है, सुबह सुबह जब होता है तो फिर एक अलग ही मजा होता है। अरिजीत सिंह, अमाल मालिक, प्रतिक्रिया कर ऑन द वोकल्स, सोनू के ट्वीटवी की स्वीटी से आज भी ये मूवी के गाने का नाम, मूवी तो छोड़ो, मूवी का नाम तो हो गई नहीं अपने से, गुड मॉर्निंग। ट्यून करिए, अगर आपको अपना कोई गाना सुनना है तो फिर 0508791054 पे व्हाट्सएप करिए और बताइए क्या सुनना चाहेंगे टू मेक योर मॉर्निंग एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा, हाँ अच्छा बना दो, चलो मैडनेस दे देता हूँ मैं सुबह, यूई वाली मैडनेस, देसी वाली, यूनियन मैड मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग।

शारजहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर। देसी सॉन्ग ऑफ द आवर ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: शर्जील
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील सुबह UAE वाली मैडनेस देसी वाली फ्रॉम 6 AM टू 11 AM
2: ओनली ऑन YBFM 105.4

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest सीन शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

0: बोले
1: झुमका किनारे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Well, the proper song that can be there every Monday. हाँ, 7:19 घड़ी पे, the 4th of May. May the 4th be with you. भाई ये बहुत पुराना हो गया. But की किफ़र पहनते हैं, चलता तो रहता है हर चीज़. Because UAE में पुरानी खबरें जो है ना, वो कभी होती नहीं. हमेशा जो है कुछ नया आता है. And May जब आता है ना, May के साथ अपने साथ एक बदलाव लेके आया. मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं. हर एमिरेट में एक ना एक अपडेट तो है. तो अभी हम लोग शुरू करते हैं the UAE first.
1: बसंती, इन हेडलाइंस पे मत नाचना. पहले सुनो यूएई का सबसे बड़ा खबर का तमाशा. ये है यूएई फर्स्ट.
0: देखो, वीकेंड तो स्टार्ट हुए, थोड़ा टाइम हो गया, बट हाँ, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एंड पेट्रोल के प्राइसेस भी बदल गए. देखिए, पेट्रोल के प्राइसेस जो है ना, ये थोड़े थोड़े ऊपर जा रहे हैं. ऊपर जाते जाते जो है ना, हम लोग को जो है ना, थोड़ा थोड़ा वो लगता है यार, चलो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, समर ये कहीं जाना है, डिजर्ट पे जाना है, कहाँ ड्राइव पे जाएंगे, गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे, पेट्रोल जलाएंगे, ना ही करें, ज़्यादा बेटर है. बिकॉज ये जो है ना, पेट्रोल के प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं, हमेशा उसमें जो है ना, एक अलग दिल में दर्द होता है. बिकॉज जब पेट्रोल खुद की जेब से जाता है तो फिर अलग ही आता है. हाँ, वो वाले पेट्रोल के दाम जो होते हैं ना, जो आराम से मिल जाते हैं, वैसे वाले नहीं होता है. हर चीज़ जो है नोटेड रहता है. अगर हम लोग बात करें अबाउट ये यूएई वाइड, तो सही, अभी अबू धाबी की तरफ जाते हैं, तो दर्ब के टोल गेट जो है, ये आज से शुरू हो गए. एंड 24/7 आपको जो है टोल्स लगेंगे उधर, जहाँ पे 4 दिरहम पर क्रॉसिंग आपको पड़ने वाला है. एंड अगर आप डेली कम्यूटर जो है ना, आप एक बात याद रखिए, ये महीना जो है ना, आपका 240 दिरहम लगभग जो है ना, लगने वाला है. बिकॉज ये जब टोल क्रॉस करेंगे ना, आप सोच समझ के करिएगा, बिकॉज ये वाला टोल जो है ना, ये देना ही पड़ेगा भाई, ये जाएगा नहीं. एंड यूएई वाइड में अगर देखा जाए, बैंक्स का जो व्हाट्सएप बैन जो है ना, ये एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज वेरी हैपेंड वेरी रिसेंटली. बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए ना, लाइसेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सचेंज हाउसेज, अब व्हाट्सएप पे कस्टमर को जो है वो लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते. मतलब कस्टमर प्रोटेक्शन जो है ना, ये आ गया. अभी इससे ज़्यादा नहीं होगा भाई, क्योंकि 100% अगर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ रहा है कोई भी बैंक की तरफ से, आप अभी हम जान सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. बिकॉज ये ऑफिशियली जो है ना, ये बैन, इट इज़ अ प्रूफ दैट यू विल नॉट बी फॉलिंग फॉर एनी फ्रॉड, या आपके साथ कुछ जो है गलत नहीं होने वाला है. एंड द बिगेस्ट न्यूज यूएई फर्स्ट में इज गोना बी द ईद अल अदा हॉलीडेज, व्हिच आर गोना बी कमिंग इन, एक्सपेक्टेड 27-29 मई तक है. एंड अगर आप जो है अपने एचआर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने टीम लीडर के साथ अच्छे से दोस्ती रखते हो, तो फिर आपको मालूम है कि ये लंबी छुट्टी आप उसको 9 दिन या 10 दिन तक कैसे खींच सकते हो. तो ये आपके ऊपर है, हाउ डू यू मेक दिस वर्क. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, ये देश मेरा भी है, आपका भी है, छुट्टी हमारी भी है, आपकी भी है, सब जो है साथ मिलेंगे छुट्टी. वेदर यूर इन रासल खैमा, फुजैरा, अजमान, उमल कुवैन, दुबई, शारजा, अबू धाबी, एनी वेयर, हम सबको है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी खुशियाँ, ये हम लोग को मिलती रहती हैं. एंड उसके बाद जो है हम लोग को है ना, थोड़ा सा प्यार मिल जाता है. तो आप जो है अपने ईद के हॉलीडेज़ को, सही है, 26 से 7 दिन या 9 दिन तक, उसको पोटेंशियली ना, वो छुट्टी को लंबी कैसे खींचोगे. एंड अगर आपको छुट्टी मिल गई 9 दिन की, तो आप कहाँ जाओगे, मुझे बताइए 0508791054. बिकॉज देखो, प्लान तो हर किसी का होता है, बट सक्सेसफुल होता है नहीं होता है ये किसको मालूम.
1: गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे. वाइब FM 105.4, the UAE's number one desi music station.
0: यार ये बहुत क्यूट सा स्वीट सा गाना है, मैंने सोचा इसको बजाना ही पड़ेगा. बायरा आपके लिए बंजारे की आर्टिस्ट से, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग. मैं उशर्जील, हाँ, सुबह यूई वाली मैडनेस, देसी वाली, मंडे का दिन.

0: From chai ki pehli sip to office ki last overspeed. Subha UAE wali madness, Desi wali mad mornings with Sharjeel.
1: Jams ho ya clear road, hum batayenge.
2: Traffic update
1: on Vibe FM 105.4.
3: वेल अगर आप आ रहे हैं फ्रॉम शारजा दुबई तो आपको एक्सपेक्टेड ट्रैफिक मिलने वाला है ऑन द यूजुअल रूट्स मोहम्मद बिन जायद हो या एहतियात स्ट्रीट हो या एयरपोर्ट टनल हो बट मोहम्मद बिन जायद पे आपने एक बार मिर्दिफ क्रॉस कर दिया उसके बाद जो है आपको किस्तों में ट्रैफिक मिलने वाला है ऑल द वे टू सिलिकॉन ओएसिस उसके बाद रास्ता पूरा क्लियर भाई साहब उधर तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बल्कि आप सोच रहे हैं कि चलो मैं मर्ज कर लेता हूँ टूवर्ड्स अलखेल रोड E44 लेके तो आपको वहाँ पे दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट से लेके ऑल द वे टू दुबई हिल्स एरिया आपको ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है देयर इज अ स्मॉल कपल ऑफ लिटिल एक्सीडेंट्स आल्सो नियर D3 तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा बट अगर आप जा रहे हैं फ्रॉम टूवर्ड्स इतिहाद स्ट्रीट हाँ शेख जायद रोड लेके जाओ भाई कोई टेंशन नहीं होने वाला है बस सालिक ही लगने वाला है और क्या ही होगा बट अगर आप इंटरनल रूट्स पे हैं ऑन टूवर्ड्स डाउनटाउन बिजनेस वे यू आर गोना फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड इफ यू नियर JVT JVC IMPZ और एनीवेयर टूवर्ड्स द IMPZ एरिया वहां पे आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलने वाला है एंड देयर इज आल्सो अ लिटिल ट्रैफिक बिल्डअप ऑन शेख जायद रोड व्हिच इज आफ्टर द MH 2 एरिया इसके अलावा बाकी सब क्लियर है हाँ बाकी सब ठीक बस चल रहा है
1: ट्रैफिक का सीन क्लियर म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन Vibe FM 105.4
3: जो दुबई शारजा के ट्रैफिक से हर रोज जाते हैं उनको क्या चीज का डर है जान से गुजर जाते हैं फॉर एवरीवन हु इज स्टक इन द ट्रैफिक 727 ऑन द क्लॉक मैं हूं शर्जील आप सुन रहे हैं मैड मॉर्निंग्स ओनली ऑन Vibe FM 105.4 सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली गुड मॉर्निंग यूएई

0: Augusta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Augusta office today or call 800 Augusta now. Augusta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

0: लौंडे
1: जितने भी हिटमैन जा रहे हैं। हाँ टूवर्ड्स अबू धाबी भाई, ये वाला हिट जो है ना अपने आपको बहुत ज्यादा अलग लगने वाला है। 7:42 ऑन द क्लॉक, मे द फोर्थ बी विद ऑल ऑफ अस। बिकॉज अगर ये फोर्थ से आप जा रहे हैं टूवर्ड्स अबू धाबी, तो भाई साहब दो नए टूल आ गए हैं। वेल अबू धाबी वालों के लिए ना ये स्पेशली है, स्पेशली जो बेसिकली हर रोज आते जाते रहते हैं। आज से गंतूत से अल कुर्म पे अगर आप जाएंगे तो एक नया दर्ब टोल जो है आपको मिलेगा, जहां पे चार दर्ब रहेगा आपको 24/7। मेरा सवाल तो ये, आप क्या करोगे इस बारे में? पे करते रहोगे? हाँ, क्योंकि चार धर्म जो है लाइफ में इंपॉर्टेंट आ जाएगा। आराम से आओ, आराम से जाओ, बिकॉज कोई नया रूट जो है ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, तो चार धर्म डाल दो। या तो भाई आप जो है क्रिस्टोफर कोलंबस बन जाओ अपनी जिंदगी के, एंड जो एक नया रूट ढूंढो, बिकॉज चार धर्म 20 वर्किंग डे कैलकुलेशन करो तो 80 धर्म पर मंथ नहीं देना है। बस देखो, ये जब सालिक भी आया था ना तब भी यही हुआ था, आज भी यही होने वाला है। वेल इतिहास गवाह है, जब जब जिसने लंबा रूट लेने की सोची है उस वक्त कैलकुलेशन ऐसा पड़ा है कि यार इससे अच्छा तो मैं चार धर्म एक्स्ट्रा देके चला ही जाता, मैं की फर्क पड़ता है लाइफ में। वेल इट इज़ अ वेरी सिंपल आंसर, सही है? या तो आप पे करोगे या तो आप नया रूट ढूंढोगे, इट इज़ अप टू यू। दो मिनट में जल्दी से ऐसा करिए, 0508791054 पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, एंड देखते हैं कि यूएई की जनता क्या बोलती है इसके बारे में। बिकॉज अगर आप टीम ए में हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, सही? आपको जो है मालूम है कि क्या करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पे करेंगे, सेंसिबल लोग हैं, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। अगर आप बोलेंगे नहीं, नया रूट ढूंढेंगे, तो यूई के आप ट्रू नेविगेटर्स हो, आपको मालूम है कि कहाँ से कैसे जाना है एंड कैसे निकलना है। तो जल्दी से बताइए मुझे कि कौन कौन कहाँ कहाँ से जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। फिलहाल एक नया गाना आया है, हाँ है जवानी तो इश्क होना है, वो मूवी से, मूवी नया मूवी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। व्याह करवा दो जी जिन जिन का नहीं हो रहा है। हाँ मिका सिंह, असीस कौर। भाई साहब गाना भी अलग, मूवी का नाम भी अलग, बड़ा ही मजे वाला है। 7:44 ऑन द क्लॉक, सुबह यूई वाली मैडनेस, देसी वाली। मैं हूं शर्जील, आप सुन रहे हैं मैड मॉर्निंग्स ओनली ऑन YFM 105.4। गुड मॉर्निंग यूई।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE।

शारजहां से शान तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर।

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

0: Love song of the hour on YBFM 105.4.
1: बॉलीवुड का मसाला दुबई की मस्ती सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन YBFM 105.4.

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

0: शर्जील
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली फ्रॉम 6 AM टू 11 AM
2: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

0: Shukran on Mad Mornings on YFM 105.4, number one Desi music station in UAE. मैं हूँ शर्जील, 8:29 on the clock. भाई साहब, मैं जो है ना कहीं पे भी अभी Instagram खोल रहा हूँ, एक चीज आ रहा है दिमाग में, सही? एंड ये जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा मीम बनने वाला है. तो आज जो है मीम रिव्यू मंडे पे देखते हैं कि कैसे आप मीम बनाएंगे एंड फेम पाएंगे.
1: सपने देखना अच्छी बात.
2: मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल.
3: मीम रिव्यू मंडे.
0: Well, देखो मीम की अगर बात करें ना, there's this one particular meme which is being meme तो नहीं बोलेंगे इसको, बन जाएगा बहुत जल्दी. The devil wears Parantha too. पराठा, हाँ वही पराठा जो भी है. बट देखो बेसी भाषा में तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ everyone in UAE, everyone around the world, सब के सब जो है भाई अपने आप को फैशनिस्टा बना चुके हैं, सब के सब जो है इसके बारे में रिव्यू दे रहे हैं, सब के सब अपना परसेप्शन, अपना टेक दे रहे हैं ऑन द devil wears Prada. जब ये मूवी आई थी इतने साल पहले, 20 साल पहले, तब तो भाई किसी को इतना मालूम नहीं था कि क्या क्या है. बट हाँ अभी जस्ट बिकॉज इट इज हैज नॉस्टैल्जिया वैल्यू एंड बाहर, हाँ वही बाहर देश में जो है लोग प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ के देसीज क्यों नहीं, हैशटैग द डेविल इज वेयरिंग प्राडा. नहीं भाई, ये कौन सा वाला पराठा हो गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया. देखो डेविल वेयर्स प्राडा, ठीक है, इट इज स्टिल फाइन, बट आप जो है मीम बना रहे हो फेम पाने के लिए, ऐसे क्यों?
4: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
5: मीम बनाओ, फेम पाओ और बन जाओ सोशल मीडिया के शोले.
0: शोले ही पढ़ने ना भाई साहब. देखो जब डेविल वेयर्स प्राडा आई थी तब तो किसी ने इतना देखा नहीं, अभी वापस आई है तो भर सबके सब भर भर के उसके बारे में बात कर रहे हैं. दे आर टेलिंग अबाउट द कास्ट, द क्रू, व्हाट इज हैपनिंग, द मूवी, द स्टोरी लाइन, ये वो, द नॉस्टैल्जिया व्हिच इज हिटिंग हर चीज. भाई ये फिर भी बाहर देश का मूवी है, अपने देश में जब आई थी आयशा, याद है? हाँ, सोनम कपूर वाली, वो वाली जब हम लोग ने देखी थी मूवी, तब हम लोगों को क्यों नहीं आया द डेविल वेयर्स प्राडा? हाँ क्यों, लिंकिंग रोड से गया था, फैशन स्ट्रीट से गया था, कहाँ से गया था मुझे आज तक नहीं मालूम है. भाई अगर मैं आज भी करामा चला जाऊँ ना, हाँ वहाँ से मैं एक अलग ही फैशन लाइन शुरू करके आ सकता हूँ बाहर. मैन दिस इज व्हाट इट इज, एवरीवन ऑन सोशल मीडिया इज राइट नाउ रनिंग बिहाइंड दिस वन पर्टिकुलर मूवी, बिकॉज सबको जो है अपना टेक देना है, सबको अपना पर्सपेक्टिव देना है, बिकॉज ट्रेंड कर रहे हैं. यार ऐसे तो होता नहीं है ना. देखो अगर आपको जेन्युइनली मूवी पसंद है, आपको जो है उसके फ्रेंचाइजी के बारे में मालूम था, कभी ना कभी आपने पिछले 20 साल में कहीं ना कहीं तो उसके बारे में बात किया होगा, अचानक से ये ना बस हाँ गड़े मुर्दे उखाड़ लिए हम लोग बैठ के, देवल वेस पराठा देखे. यार बार बार दिमाग में पराठा ही आ रहा है, सुबह सुबह नाश्ता करने का मूड ही अलग होता है. तो अगर आपने जो है द डेविल वेस पराठा 2 देखी है, क्यों देखी, हाँ उसका एक रियल रीजन बताओ. बट अगर आपने माइकल जैक्सन देखा है तो भाई साहब आपको मालूम है कि आपने क्यों देखा है, बिकॉज दैट सही है, दैट आई कैन एक्चुअली रिलेट टू, बिकॉज सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो माइकल जैक्सन का डांस स्टेप या कोई गाना कोई ना अपने आपको लिंक किया ही होगा, स्पेशली वेयरिंग दैट ब्लैक सूट विथ अ वाइट शर्ट एंड दैट हैट, दैट लेजेंडरी हैट. That is what Michael Jackson was all about, and this is what it is. मैंने जो है अभी तक देखी नहीं है, but हाँ बहुत सारी ऐसी movies हैं जो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, and लोग जो है देखना भूल जाते हैं, जैसे धुरंधर 2. हाँ वो मैंने आज तक नहीं देखी है, and अभी I don't think मैं देखना भी चाहूँगा कि what happens in धुरंधर 2. अगर आपके पास spoiler है दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, because I'm not going to watch it.
6: Bollywood का तड़का, UAE का प्यार, बस यही मिलेगा.
0: तो सलाह मेरी ये है, पीयर प्रेशर में गिरो मत, डोंट बी अ घनचक्कर, बिकॉज घनचक्कर बाबू बनने में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है. हाँ बस डेविल वेयर्स पराठा विद बटर चिकन खाना ही पड़ेगा. सुबह यूएई वाली मैडनेस, देसी वाली, 8:33 ऑन द क्लॉक. मे द 4th बी विद ऑल ऑफ अस. गुड मॉर्निंग, मैं हूं शर्जील.

0: Augusta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Augusta office today or call 800 Augusta now. Augusta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: अभी जो है थोड़ा सा रिकवर कर रहे थे हम लोग कुछ कुछ चीजों से, एंड वापस जो है सुनील पाल ये आ गया भाई। मैं देख रहा था उस दिन कपिल शर्मा शो विद समय रैना एंड बीए बाइसेप्स, मैं देखने के बाद मैं बोला यार सुनील पाल इधर आगे ठीक है मजा आता है, बट उन्होंने वो एक लाइन ऐसी बोली ना जो भाई जिस पे अर्चना पूरन सिंह भी नहीं हंसी, जो बेसिकली हर चीज पे हंस देती है कि जो कॉमेडी है वही कॉमेडी है। ठीक है, ये लाइन के साथ आप भी रहिए मैं भी रह रहा हूँ, बट अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीधी, बिकॉज सीधी बात
1: ये रेडियो पर डिबेट नहीं है, ये है शर्जील का फैसला, सीधी बात नो बकवास।
0: 8 बज गए सही, आज कोई मेहमान नहीं, आज कोई नहीं यहाँ पे, आज सिर्फ मैं एंड आप है, बिकॉज यूएई का बात जो है ना बहुत ही सीधा होता है। इस हफ्ते यूएई में बहुत कुछ हुआ है, ओपेक जो है छोड़ा गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, टोल जो है ऐड हुए हैं, बैंक्स ने व्हाट्सएप किया बंद, एआई वर्क परमिट्स आ गए, सब एक साथ एक ही महीने में। हम लोग को लग रहा था कि मार्च जो है बहुत अलग था ना, ये मई, हाँ मई ही अभी है शुरू हुआ है। देखिए मेरा सवाल ये है बहुत सिंपल है, सही है, यूएई में रेजिडेंट्स जितने भी है ना सबका एक कॉमन फीलिंग होता है, एंड वो कॉमन फीलिंग होता है कि भाई हम लोग का गवर्नमेंट हमेशा हम लोग के बारे में ही सोचता है, एंड दे मेक श्योर दैट वी गेट द बेस्ट नो मैटर व्हाट हैपेंस। सही है, इकोनॉमी हो गया, बिजनेस हो गया, हर चीज़ के लिए एक सोल्यूशन बन जाता है पहले, बिफोर अ प्रॉब्लम इज इवन थॉट अबाउट। सही है, ये जो है एक जनरली कन्फ्यूज आदमी जो है ना वो हमेशा सोचता है कि यार इससे ज़्यादा रेसिडेंट फ्रेंडली और क्या हो सकता है। सही है, डीजल जो है फ्रीज हो गया है, एयर स्पेस जो है रिज्यूम हो गया है, ईद की हॉलीडेज जो आ रहे हैं, कुछ चीज़ें जैसे पेट्रोल हो गया, टोल हो गया, ये जो है वॉलेट में लगती है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें आपका ही फायदा है। वेल, अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि पेट्रोल जो है हम लोग इतना बढ़ रहा है रेट उसका क्या करेंगे, देखो महंगाई भाई हर चीज़ में बढ़ती है, बट एट द एंड ऑफ द डे पेट्रोल रेट आपका अगर समर में बढ़ रहा है अच्छा, विंटर में अगर बढ़ता है ना तो भाई मुश्किल होता है। विंटर में जब कम रेट होता है ना तब जो है बहुत सारे लोग खुश होते हैं, एंड अगर हम लोग बात करें अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट कीप हैपनिंग राइट, अगर आपके पास कोई ऐसी बात है दैट यू थिंक दैट This is where home is, सही है, अगर यू ई को हम लोग अपना होम बोल रहे हैं, दिस इज़ वॉट वी स्टैंड फॉर, लाइक फॉर मी 33 years ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन इन दिस कंट्री, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई लाइक क्या मुझे ये कोई और कंट्री में मिल सकता है, आई हैव गॉट एवरीथिंग ओवर हियर। यहाँ पर मैंने अपने दोस्त पाए, मैंने अपने रिश्तेदार पाए, यहाँ पर मैंने अपना जॉब शुरू किया था, यहाँ पर मैंने अपना करियर शुरू किया था, आई हैव लर्नड बींग myself in UAE, एंड ये जो है बहुत सीधी बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना सबके सब जो बोलते हैं यार क्रिप करते छोटी छोटी चीज़ों पे, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्रिप करते करते आप जो है अपने आप को बहुत नेगेटिव करते हो, अपने दिमाग को जो है परेशान करते हो, एंड फिर रात भर बैठ के 2 बजे तक सोचते रहते कि ये मैंने क्यों किया। वेल, क्यों का जवाब जो है कहीं नहीं होता है, बिकॉज शायद अगर आपको मालूम है ना, आप अगर यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा रहोगे आपको मालूम है कि ये होम का मतलब जो है ना क्या होता है, एंड ये जगह जो है सबके लिए परफेक्टली इम्परफेक्ट है, एंड नो मैटर वॉट यू डू यू आर ऑलवेज गोन बी हैप्पियर, सेफर, एंड यू गोन बी द मोस्ट एक्साइटेड पर्सन इन यूएई, बिकॉज यार हर जगह हर वक्त कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। लाइक मेरा जो है ना हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहता है यार, ग्लोबल विलेज इतना बड़ा क्यों है, एक दिन वाला एक्टिविटी नहीं है, बट ठीक है वहाँ पर भी अभी जो है देयर इज अ करंट ऑफर गोइंग ऑन वे यू कैन अवेल ऑल द राइड्स ऑफ देयर फॉर 99 dirhams। ये जो है ना इज लाइक अ वेरी वेरी वेरी ना सोने पे सुहागा, ऑलमोस्ट फ्री टाइप वैसा वाला हो गया। तो अगर आपने यूएई में, सही है, द मोस्ट फनीएस्ट एंड ऑनेस्ट आंसर जो है आप मुझे दीजिएगा, द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट हैज हैपेंड विथ यू इन द लास्ट 3 months, डू लेट मी नो 0508791054, जल्दी से बताइए, एंड देखते हैं कि आपके दिलों में एंट्री जो है कैसी पड़ी है। वेल, दिल की एंट्री जो है अलग होती है, बिकॉज जब वो एंट्री मारती है वो एग्जिट भी ले लेती है। नाइफ पे गिरा एप्पल, एप्पल पे गिरा नाइफ, इसको मैं राइम नहीं करूंगा बिकॉज कटने वाला है सबका लाइफ। 8:49 ऑफ द क्लॉक, मैं शर्जील, सुबह यूएई वाली, मैंडस देसी वाली, गुड मॉर्निंग।

0: रुक चो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
0: एनर्जी बोले
2: YBFM 105.4।

0: दीवाना चीनी,
1: शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस, देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शारजील।

0: लाल घाघरा आपके लिए नेहा कक्कर मंच म्यूजिक हर भी सहारा तनिष बागची 9:11 घड़ी पे दिमाग जो है ना बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, कभी कभी दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि उसको कैसे मतलब है ना आए भी कैसे दिमाग में ऐसे थॉट्स। ऐसे थॉट्स जो है मैं कभी लाता नहीं, आपके दिमाग में भी आए होंगे, बट फिलहाल देसी वर्ल्ड रैप बहुत सारी चीजें चल तो
1: गेट खुला है हेडलाइंस का, चलो बोर्डिंग करें। वेलकम टू देसी वर्ल्ड रैप।
0: देसी वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, वेल अगर हम लोग बात करें अबाउट IPL 2026, पंजाब किंग्स जो है ना अनबीटन, RCB नंबर 2, सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 3, RR नंबर 4, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस प्रैक्टिकली चली गई भाई, CSK किधर है पता नहीं है भाई, क्योंकि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, मेरे पास अभी भी अंदर से है ना आवाज़ आएगी भाई धोनी भाई आएंगे, धोनी भाई आएंगे, अपना माही आएगा, थला फॉर अ रीज़न, शायद 7वां मैच, शायद द 16th मैच, या तो कोई ना कोई मैच तो होगा जहाँ पे वो आएंगे आएंगे। बट हाँ, ये जो है दिस IPL सीज़न इज़ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सीज़न, क्योंकि भाई इसमें समझ भी नहीं आ रहा कि कौन कहाँ है, कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है। मतलब IPL हैज़ बीन अ वेरी, ये वाला है ना बस आया एंड चल रहा है। अगर स्टैंडिंग्स हिसाब से देखिए आफ्टर लास्ट नाइट से पंजाब किंग इज़ राइट ऑन टॉप, हम लोग लेट्स फॉरगेट अबाउट लखनऊ सुपर जायंट्स, बट उसके ऊपर आते हैं मुंबई, CSK इज एट नंबर 6, लाइक देर नॉट इवन द टॉप 5, CSK कैसे भी करके शायद ऊपर चला भी जाए, बट मुंबई इंडियंस भाई 9 में से 7 मैच हारे, कैसे होगा, मतलब क्या चल रहा है आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड अगर बात करें अबाउट ऑल द परफॉर्मर्स देयर, राइट, मोस्ट विकेट्स आर बीन टेकन बाय भुवनेश्वर कुमार, अगर रन की बात करें वी हैव अभिषेक शर्मा ऑन टॉप, वी हैव वैभव सूर्यवंशी, एवरीवन इज गोइंग आउट देयर, मतलब 400 रन लग चुके हैं ये मैच में भाई अभिषेक शर्मा, एंड वी स्टिल थिंकिंग कि और क्या क्या होने वाला है, बट देयर आर सो मेनी मैचेस व्हिच आर स्टिल गोइंग टू बी कमिंग अप, एंड ये कमिंग अप पे जो है ना अपना भाई कमबैक कैसे होगा कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ उम्मीद तो हमेशा रहेगी कि कुछ ना कुछ तो हो। आज इट इज़ गोइंग टू बी द मैच बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, इसमें जो है क्या होगा कैसे होगा कोई आइडिया नहीं है, बट कल का मैच हाँ CSK वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू बी वेटिंग फॉर, बिकॉज यार उसमें तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ये धोनी जो है ना एक अलग ही राज बन गए, वो अभी टीम में भी हैं नहीं भी हैं, दिख रहे हैं बट नहीं भी दिख रहे हैं, एंड टीम को मोराल जो है इट एक्चुअली ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दैट वन पर्टिकुलर प्लेयर, बिकॉज वन पर्टिकुलर प्लेयर कैन ऑलवेज मेक एन इम्पैक्ट। लाइक हाल ही में ये जो वीकेंड था आई वॉज प्लेइंग अ मैच ओवर देयर, वहाँ पे बिकॉज द टीम वॉज न्यू इट वॉज गुड, बट जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जब मिसिंग होते हैं ना वो टीम का जो मोराल जो है ना कभी कभी डाउन होता है, एंड जब तक कोई नया वाला कोई बंदा उसके अंदर जंप इन ना करे एंड किसी को बताए चलो जो है हम लोग उसमें कुछ करते हैं, अलग अलग निकालते हैं, कुछ करते हैं, बातें करते हैं, हर चीज़ करते हैं, वेल पीपल हैव द टेंडेंसी ऑफ टेकिंग टाइम टू ओपन अप, बट ओपन अप होने में क्या करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट देसीएस्ट प्रॉब्लम यू कैन हैव। अगर आपके पास सही है, वॉट इज़ द मेन आइस ब्रेकिंग कॉन्वर्जेशन दैट यू कैन हैव विद एनीवन, टू लेट मी नो 0508791054, हाउ डू यू ब्रेक द आइस। सही है, ये बर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो तोड़ता है तो फिर दर्द होता है, अगर नहीं तोड़ता है तो भी दर्द होता है, बट बर्फ़ कैसे तोड़ते हैं, अगर आपके पास इसका सही जवाब है बताइए 0508791054। 9:14 घड़ी पे, अगले 8 सेकंड में जो है 9:15 हो जाएंगे, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।
2: गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे, Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station.
0: Diljit Dosanjh, Badshah, Aastha Gill, Proper Portola from Namaste England, Sundari Mad Mornings with Sharjeel on Vibe FM 105.4. Good morning, UAE.

बोले झुमका किरारे रेडियो बोले झुमका वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

0: अनजाना अनजानी यही सफर से शुरू होती है सबकी कहानी। 9:37 on the clock, may the fourth be with all of us। आज का डेट बोल रहा हूँ मैं, क्या हो गया? Well, आज जो है it is going to be a very different segment called the good mat। ये good mat पे जो है मैं हमेशा बताता हूँ about these feel good moments that people have, these small little incidents जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से and they have this lot of ना बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं and ये जो है आज हम लोग बात करेंगे in the good mat of a very different story।
1: Happy ending का असली सीन सुबह सुबह ये है good mat Shajil style।
0: कल जो है मैं एक्चुअली बैठा हुआ था घर पे एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस वन पर्टिकुलर पर्सन हु आई केम अक्रॉस इन मुंबई। दिस वाज बैक इन 2009-2010 के आसपास एंड ये जो है ही वुड बी लिविंग इन एन एरिया इन मुंबई इन कुर्ला, वहाँ पे जो हम लोग का अपार्टमेंट्स था, अपार्टमेंट्स के विंडो सिल पे बैठे रहते थे। तो आई वुड बी एज अ किड वहाँ पे दोस्तों के साथ नीचे क्रिकेट वगैरह खेलता था। आई वुड जस्ट कम इन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड देन गो बैक। दैट वाज माय समर वेकेशन। सही है, वहाँ पे जो है मैं एक आदमी को देखता था दैट ही वुड बी कॉन्स्टेंटली सिटिंग ऑन दैट विंडो सिल। सही है, नीचे हम लोग सबको खेलते हुए देखते थे। ही वॉज अ लिटिल ओल्डर देन अस, हमेशा बैठ के देखते थे हम लोग को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ही वुड नेवर कम डाउन एंड प्ले विद अस। एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, मैंने जब दो साल इसको कंटिन्यूसली देखा है, हर रोज़ देखा है ना, उस वक्त मैंने जो है थोड़ा क्यूरियोसिटी अपने अंदर का जागा है। मैंने बोला यार देखना पड़ेगा कि इसकी स्टोरी क्या है। सही है, तो स्टोरी जो है मुझे कोई बता नहीं था, बट देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर पर्सन हु वाज लिविंग इन दैट बिल्डिंग एंड वो जो है भाई उन्होंने बताया मुझे कि इनका एक्चुअली स्टोरी क्या है। कभी कभी है ना कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट ब्रेक होता है एंड ये वाला हार्ट ब्रेक जब होता है ना तो भाई जब दिल टूटता है तो उसको जोड़ने के लिए कोई नहीं होता है। बिकॉज जब दिल टूटता है हर आदमी से लेट बी अ गाय और अ गर्ल, उनके दिमाग में क्या चलता है, द इमोशनल स्ट्रेस दे गोइंग थ्रू, द इंटरनेट डिस्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ फिजिकली इमोशनली मेंटली बींग ड्रेन्ड आउट बींग रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड। यार हर किसी को वो फील आया है लाइफ में, कभी ना कभी आया है, मुझे भी आया, आपको भी आया है, हम सबको आया है, आप किसको जानते हो उसको भी आया होगा। एंड दैट वन पर्टिकुलर फीलिंग ना, वो टाइम लगता है मूव ऑन करने में, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो रह जाता है दिमाग में, इट नेवर गोज अवे। लाइक कोई कोई जगह पे आप जाते हो वेर यू रिमेंबर दैट पर्सन, आप कुछ कुछ जगह पे खा रहे होते हो यू रिमेंबर दैट पर्सन, यू हैव स्मॉल लिटिल मेमोरीज विच आर बीइंग बिल्ट नो मैटर व्हाट हैपेंस। सही है, एंड वो बंदे के लिए ही ट्रेजिकली पास अवे मेनी अ कपल ऑफ इयर्स बैक एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, बट दैट वन थिंग राइट, दैट वन थॉट विच वॉज देयर इन माई हेड इज के he didn't have anyone around to share his story, his side of the viewers and the partner he was wanting to be with, वो उसके पास नहीं थी। एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज यार कि दोस्त जो है ना भाई बहुत ज़रूरी होते हैं एंड असली दोस्त वो होते हैं ना जो नो मैटर वॉट हैपन्स, ये आप कैसे भी सिचुएशन में रहो नहीं रहो आपके साथ रहते हैं, आपको पकड़ के पीट के आपके सर के अंदर घुस जाते हैं, बोलते हैं कि भाई छोड़ आगे निकल। And that is where the subject of move on comes in. And ये दोस्त जो है ना आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हर रोज़ मिले या हर महीने में मिले या हर वीकेंड पे मिले या कभी मिले, आप इनको अगर 5 साल बाद भी फ़ोन करोगे ना भाई ये आपके दोस्त रहेगा। एंड मी एज अ पर्सन मैं वो दोस्त रहता था सबका कि नो मैटर वॉट हैपन्स इवन एट 3 in the morning आप मुझे फ़ोन करोगे आई वुड बी देयर फॉर यू, आई वुड स्टैंड बिहाइंड यू लाइक अ पिलर। ये दोस्त निकलना जो है ना बहुत मुश्किल होता है एंड गुड मैट जो है it is for all those people who have been with you during those tough times of being in a relationship or being in a hard situation that aap handle nahi kar pa rahe the, to un doston ke liye agar aapke paas koi shout out hai to give it to me on 0508791054 because kabhi kabhi hai na look nahi hota hai, wo dekhne ki nazar ki baat hoti hai, nazariya agar badal jaye na to bhai 9:41 ho jate hai ghadi pe। chalo abhi aisa karo aage gaane sunata hu, emotional baatein bahut ho gayi। गोलमाल अगेंस्ट आपके लिए नीराश्री दास सुकृतिका का ऑन द वोकल्स मैंने तुझको देखा। यार दोस्त है ना कैसे भी होते हैं, बट होते तो अपने ही है। चलो कोई नहीं, गुड मॉर्निंग।

0: गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।
1: Yo, yo, yo, yo, got an Angela.

शारजहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर।

0: Jogasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Jogasta office today or call 800-JOGASTA now. Jogasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का बिगेस्ट सीन शुरू हो चुका है. मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील, मस्ती, मैडनेस और फुल ऑन देसी वाइब. सुबह यूएई वाली मैडनेस, देसी वाली, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4.

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल।

0: पुराने गॉसिप और वही देसी कनेक्ट यूई का अपना दिल वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।
1: Carnival, the last ride.

0: नहीं भाई, रात तो अपनी होती है भाई, किसी एक याद में गुजारने का कोई फायदा होता नहीं है कभी जिंदगी में। 10:32 on the clock, शो का नाम मैड मॉर्निंग्स ऑन YFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE। मैं हूं शर्जील, मे द फोर्थ बी विथ यू। हाँ बोला था ना मैंने, बट मे द फोर्थ बी विथ यू में ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए हम लोग सब जो है इंतजार कर रहे थे। वेल, इट इज ऑफिशियली आउट, 14th of August 2026 को आएगी द विशेष भट्ट आवारापन 2। भाई मतलब इतना इंतज़ार किया हम लोग ने इस मूवी का कि इतने साल हो गए, हम लोग को कभी लगा भी नहीं था कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। बट जब मूवी आई थी ना आवारापन, इट वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट वाइब भाई। दैट स्टोरी लाइन, द इमरान हाशमी, द सॉन्ग्स, द इंटायर स्क्रिप्ट, द तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, ओ भाई साहब, आज भी उसके बारे में सुनते हो ना तो भाई अलग ही रोंगटे खड़े हो जाते हो सुन के। बट आवारापन 2 बन जब आएगी, आवारापन 2 हाँ ये जब आएगी तो भाई देखना पड़ेगा कि और क्या क्या होने वाला। बट हाँ, आने वाला है कुछ ऐसा जिसके लिए आप जो है मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो, आप लोग जो है कैसे भी रेडी हो रहे हो। बट हाँ, इसमें आपको मालूम करना पड़ेगा कि आप क्या क्या करने वाले हो। द ईद हॉलीडेज आर गोइंग टू बी कमिंग इन वेरी वेरी सून, पोटेंशियली ऑन द 27th of May। सही है, तो अपने पास 6 दिन की छुट्टी जो है प्रोबेबिलिटी पड़ जाती है अगर मैं कैलेंडर खोलूँ। सही है, तो कैलेंडर के हिसाब से अगर हम लोग को 27th की छुट्टी आती है, सही है, इसका मतलब वेडनेसडे पड़ता है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद 31st हो गया। हाँ, ये पूरा आपको जो है ना 6 दिन की छुट्टी आ सकती है। बट अगर आपके HR जो है बहुत ज़्यादा दयालु हैं या आपके पास लीव्स हैं जो पहले से बाकी हैं, तो आप 22nd को छुट्टी अगर लेते हो, फ्राइडे को काम करते हो, खुश नसीब हो, तो फिर 22nd, 23rd, 24th आपको 25th, 26th की छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर 27th, 28th, 29th, फिर 30th, 31st हो गया। इतनी लंबी छुट्टी आपको बना दी प्लान, यह आपके ऊपर है। बट अगर इतनी लंबी छुट्टी ले भी लोगे ना, क्या ही करोगे। हाँ, नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन लोगे, उसके साथ बैठे रहोगे, पुराने कोई मूवीज़ वगैरह उसको वॉच करोगे, क्या करोगे। ऐसा क्या प्लान है अगर आपके पास लंबी छुट्टी आएगी तो, सच बताइए आपका मतलब बजट प्लस ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, या आप क्या करना चाहते हैं ऐसा जो आपने बहुत टाइम से सोचा है कि मैं करूँगा, या तो आप खुद जो है कुकिंग शुरू करेंगे, वो आपके ऊपर क्या करने वाले हो। बट इफ़ यू हैव अ प्लान विच इज़ देयर फॉर ईद, ईदर इज़ फॉर 6 डेज और 10 डेज, या जैसे भी आप उसको बनाना चाहते हो, डू लेट मी नो 0508791054। देखते हैं कि लोग कितना और क्रिएटिव हो सकते हैं विद ईद।
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील, सुबह UAE वाली मैडनेस देसी वाली, फ्रॉम 6 AM टू 11 AM,
2: ओनली ऑन YFM 105.4।
0: Well, जो भी हो जैसा भी हो, KGF की गली, हाँ KGF गली गली ये गली में भाई मैं चला गया ना ईद की छुट्टी बनाने, वापस नहीं आता फिर। 10:35 on the clock, मैं हूँ शर्जील, आप सुन रहे हैं Mad Mornings only on YFM 105.4, 11 बजे तक आपके साथ। Good morning।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शारजील।

बॉलीवुड का तड़का यूएई का प्यार बस यही मिलेगा। YBFM 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

वक्त हुआ खत्म, मैं निकल रहा हूँ स्टूडियो से, मिलूंगा वापस आपको कल 6 से 11 ओनली ऑन मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील। फॉलो अस ऑन सोशल्स ऑन वाईफाई 1054, फॉलो मी ऑन इंस्टा अंडरस्कोर शर्जील। मिलूंगा वापस आपको कल, तब तक के लिए हमेशा की तरह डू व्हाटएवर यू वांट टू, जो करना चाहते हो करो, नेवर थिंक अबाउट थिंग्स ट्वाइस, कीप पीपल हैप्पी, नहीं पहले कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू। सी यू टुमारो, मैं और तू फ्रॉम द मूवी धुरंधर, सुनते रहिए, एंजॉय करिए, थोड़ी देर में देसी एक्सप्रेस, फिर साउंड्स गुड विद सोफी एंड द फेमस 710 विद सैयद अरशद, पूरे दिन का आपके लिए गाना, मनोरंजन, म्यूजिक सब लॉक्ड। गुड मॉर्निंग।

0: से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो वाइट बे पे मनो 54
1: यात्री कृपया ध्यान दें, TC एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 105.4 पे आ रहा है।

सरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

दिल्ली का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। YFM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

देसी बीट्स यूएई स्ट्रीट्स तैयब के साथ ओनली ऑन देसी एक्सप्रेस। देसी बीट्स फुल हीट ओनली ऑन वाइब एफएम।

0: हॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। Vibe FM 105.4, number one Desi music station in UAE.
1: Aare suno doston, Dubai ka naya fashion, naya shore.

0: सुबह से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजाओ वाइब पे 105.4
1: Attention please, next stop
2: Day 6 Express with Teddy Up.

0: बोले
1: झुमका किनारे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: This is Vibe FM 105.4.
1: गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे. Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

देसी एक्सप्रेस विद तैयब देसी बीट्स UAE स्ट्रीट 11 AM to 3 PM ओनली ऑन YBFM 105.4।

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800 Jugasta now. Jugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब एफएम 105.4।

तेरा केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: सुबह से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो वाइब एफएम 105.4
1: Attention please, next stop, Days Express with Teddy Up.

शरारत का स्टेशन, मस्ती का डेस्टिनेशन, देसी एक्सप्रेस विद तैयब, सिर्फ वाइब FM 105.4 पे।

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। YBFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: हुक जो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
0: एनर्जी बोले
2: वाइब एफएम 105.4।

0: मूड बोले
1: झुमका गिरा रे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: YFM 105.4 UAE का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब FM 105.4।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब एफएम 105.4 द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: सुबह से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड, बस बजो वाइब एफएम 105.4।
1: Attention please, next stop, Days Express with Teddy Up.

शरारत का स्टेशन, मस्ती का डेस्टिनेशन, देसी एक्सप्रेस विद तैयब, सिर्फ वाइब FM 105.4 पे।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। Vibe FM 105.4, number one desi music station in UAE.

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800-JUGASTA now. Jugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग।
1: Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
2: Desi music station.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक. Sounds good with Sophie. Only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। YBFM 105.4, the UAE's number one desi music station.

कार में ही रहिए, दिल में वाइब्स, ड्राइव का परफेक्ट साथी, वाइब FM 105.4।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: मॉर्निंग का स्ट्रेस, सोफी के साथ हो जाओ रिफ्रेश। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।
1: वेलकम टू ओशन टावर, वेयर लक्जरी मीट्स लाइफस्टाइल। डाइव इनटू दुबई'स फर्स्ट एवर लेजी रिवर राइड इनसाइड योर बिल्डिंग। प्ले अ राउंड ऑफ मिनी गोल्फ, रिलैक्स इन द इंफिनिटी पूल विद पैडल टेनिस, आउटडोर योगा एंड स्काई लाउंजेस ऑफरिंग ब्रेथ टेकिंग व्यूज। यू विल नेवर वांट टू लीव। जस्ट 800 मीटर्स फ्रॉम द बीच एंड मिनट्स फ्रॉम देरा मॉल, योर ड्रीम होम अवेट्स एट ओशन टावर इन दुबई आइलैंड बाय अहमद अल अंसारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट। विजिट AAA रियल एस्टेट डेवलपमेंट .com or call 0460205355 today.
0: Workday ka the end, party ka asli start. Sophie ke saath. Sounds good with Sophie. Only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

0: का स्ट्रेस, सोफी के साथ हो जाओ रिफ्रेश। Sounds good with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.
0: This is song of the hour, only on.

0: ये है यूएई का देसी साउंड ट्रैक वाइब एफएम 105.4।
1: ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल। साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब एफएम 105.4।

वर्क डे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। Sounds good with Sophie, only on Vibe FM 105.4.

वर्क डे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: drive home, switch on, and let Sophie turn up the good vibes.
1: Sounds good.
0: Sounds good with Sophie on Vibe FM 105.4.
2: इश्क का साउंडट्रैक आज बजेगा सिर्फ वाइब एफएम 105.4।

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: विद सोफी, ओनली ऑन वाइब FM 105.4.
2: 105.4.

All right, everyone, a very good evening to all of you. Thank you so very much for texting in, for the feedback as well. Time ho chuka hai 5:16, and she'll be with you all the way till 7 p.m. The name of the show is called Sounds Good with Sophie and Vibe FM 105.4, jo ke UAE ka number one desi music station. Anyhow, so a lot of things to talk about. Sabse pehle to aaj ka topic of discussion basically ye hai ki aapko pata hai kafi zyada biopics ban rahi hain kuch saalon mein. Pehle aayi thi Freddie Mercury ke upar, unka jo band tha Queen, Bohemian Rhapsody was one of the most successful films of all time. फिर माइकल जैक्सन के ऊपर एक बनी माइकल के नाम से, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है. सो आज का सवाल ये है कि इफ़ यू वर टू सजेस्ट द नेक्स्ट सेलिब्रिटी हुज़ बायोपिक द वर्ल्ड गेट्स टू वॉच, सो हु वुड इट बी? सो लॉट ऑफ पीपल आर वोटिंग फॉर अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, लता मंगेशकर जी, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट आतिफ असलम, उसके अलावा ब्रैड पिट भी आ गया था, मेरिल स्ट्रीप भी आ गई थी दरमियान में, एंड देन दिव्या स्टूनियन, एंड शी वॉज फॉर कोहली, किंग कोहली फॉर शोर. ओ माई गुडनेस, दैट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर शोर. थैंक यू फॉर टेक्सटिंग इन. एंड देन आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज, एंड दिस वन हैज़ बीन सेंट इन बाय विजय. विजय इज एन्जॉइंग द शो, वेल थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग टू यू. इसे सोफी, आई थिंक आशा जी के ऊपर होनी चाहिए जैसे आपने मैंशन किया. येस, पता है क्या, एक्चुअली वन ऑफ माई लिसनर्स गोविंद हु वॉज ट्यून इन, ही मैंशनड लता मंगेशकर जी, एंड ही सेट कि देखिए हम तो अक्सर क्रिकेटर्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, एक्टर्स के बारे में भी, पर जो हमारे सिंगर्स होते हैं उनका ज़्यादा हमें पता नहीं चलता कि बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, जब लिरिक्स लिखे जाते हैं, कॉम्पोजिशन तैयार होती है, यू नो बेसिकली वॉट गोज ऑन बैक स्टेज. सो दैट्स वाई आई वॉज लाइक, यू नो वॉट, ही सो राइट. And with that, Asha ji was the OG, like she was a legendary icon, and why not? So apart from that, I've got a message from Abizar after such a long time. Hi Abizar, how are you doing? Talk to me about your life these days, and how's work, how's the health, how's the family? I hope you're well. And he says, I tuned in a couple of times, but you weren't there really. I usually am hosting my show pretty regularly, but I think ho sakta hai kyunki kai dafa hum zyada back to back sessions bhi lagate hain, to ho sakta hai uske darmiyan aapne miss out kar diya, but it's great to have you back and talk to me about what's going on as well. Anyhow, so next we have the gold rates as well, uske baad the currency exchange rates. Isse pehle hum aapko bata rahe the about news headlines as well, but for now, check this out. I'm sure you must have heard it because it's trending on, you know, reels on Instagram and TikTok videos and all of that. This is going to be Diljit Dosanjh with Ranjha. Take a listen.

स्टेक एट द एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: night, everyone. A very good evening to all of you. Thank you so very much once again for texting in, for the feedback as well. And it's exactly 5:53 on the dial. She'll be with you all the way till 7 p.m. Aapko pata hai, there's a brand new start of the week ahead. It is Monday, the 4th of May, 2026. So how does the week look so far? Are you guys going to be busy? Is it going to be a bit of a relaxing week? I want to know all the details. So Atik is tuned in. And hi, Atik. How are you doing? I hope you're well. And he was listening to what I had to say about Michael Jackson's film, right? And he was like, Sophie, you know what? I saw his movie, and also I specifically saw an episode. Which episode are you talking about? Because the movie is different. And then I remember when, you know, the thing is, sometimes you have all these legends and icons, and they're there for a reason. Because when you think about, say, for example, Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan, right? I mean, they're legends. And aapko instantly unki agar copy karni ho ya unko imitate karna ho, to you would know how to do it, because they also look a certain way, they act a certain way, they have a certain kind of style. Same goes for Abda Parveen Sahiba, same goes for Ustaz Nusrat Fateh Ali Khan Sahab, and same goes for Michael Jackson as well. At the same time, even the king of rock and roll, if you talk about Elvis Presley, the king, right? So you know for sure, because they have already kind of stamped up on this style. So mujhe aisa lagta hai ki कई दफ़ा अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज होते हो एज एन आर्टिस्ट एंड यू नो अ लॉट ऑफ सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड दे माइट बी वेरी गुड एट व्हाट दे डू बट यू नो दे आर नॉट रियली दैट स्ट्रीमलाइन व्हेन इट कम्स टू देयर ओन काइंड ऑफ स्टाइल दैट इज़ व्हाई हमें हमेशा अपना एक ओरिजिनल स्टाइल रखना चाहिए इंटैक्ट बिकॉज वो जो हम कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता करेक्ट एनी हाउ 0508791054 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ और शहर के नाम के साथ एंड टुडेज़ टॉपिक की डिस्कशन इज दैट इफ़ यू वर टू सजेस्ट the next biopic, okay, for any celebrity, who would it be? So a lot of people are talking about Meryl Streep, and they're talking about Brad Pitt and Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, King Kohli, phir message aaya tha Atif Assam ke bare mein, Asha ji ke bare mein, Lata Mangeshkar ji ke bare mein. So a lot of people are talking about different kind of artists around the world, but if you had to pick, okay, any one particular celebrity whose biopic the world gets to watch, so who would it be? Now that is a thought to ponder on. Anyhow, so Ati keh rahe hain, Sophie, diye jo weekend tha ये मेरे लिए बिजी भी था, स्ट्रेसफुल भी था, बिकॉज देर वॉज अ फैमिली फ्रेंड, एक्चुअली आई थिंक इट्स इज कज़न दैट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट इज़ नॉट बिन फीलिंग वेल, एंड वी होप एंड प्रे इंशाल्लाह दैट ही गेट्स टू फील वेल. वेल आई विल डेफिनेटली प्लग इन अ दुआ फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली इज़ वेल इंशाल्लाह. आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. अति कीप अस पोस्टेड एज वेल. एंड देन विच इज़ ऑल्सो टेक्सटिंग इन, ही इज़ वोटिंग फॉर सचिन तेंदुलकर. इंटरेस्टिंग लिटिल मास्टर. ओके ग्रेट. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे मैसेज आया अब्दुल रहमान का, एंड खुरफा खान की साइड पर वो होते हैं, ही सेंडिंग मी ऑल दीज वीडियोज एंड पिक्चर्स ऑफ हिज वीकेंड, ही वेंट कैंपिंग, आई कैन सी बाबी क्यू राइट नाउ. मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं तो वैसे ही फूडी हूँ, तो इसलिए मैं तो ना ही बात करूँ. अच्छा अच्छा होगा. अभी के लिए पंप अप द वॉल्यूम, एंजॉय द म्यूजिक.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.

0: वर्क डे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। Sounds good with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: का स्ट्रेस, सोफी के साथ हो जाओ रिफ्रेश। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।
1: वेलकम टू ओशन टावर, वेयर लग्जरी मीट्स लाइफस्टाइल। डाइव इनटू दुबई'स फर्स्ट एवर लेजी रिवर राइड इनसाइड योर बिल्डिंग। प्ले अ राउंड ऑफ मिनी गोल्फ, रिलैक्स इन द इंफिनिटी पूल विद पैडल टेनिस, आउटडोर योगा एंड स्काई लाउंजेस ऑफरिंग ब्रेथ टेकिंग व्यूज यू विल नेवर वांट टू लीव। Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit aaarealestatedevelopment.com or call 0460205355 today.
0: Dubai ki traffic, evening ka asli swag aur Sophie ka music.
2: Sounds good
0: with Sophie. Only on Vibe FM 105.4. Brought to you by Dugasta Properties.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: शाम की गुफ्तगु, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
2: यही तो गम है।
1: दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं इंडिया में, खासतौर से यूपी बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले कोई एग्जिट पोल नहीं आता, वरना मेरे घर वाले तो रिजल्ट के 3-4 दिन पहले से ही मेरी पिटाई शुरू कर देते, है कि नहीं।
3: Arshad has entered the building. Keep within reasonable distance from your radio set.
4: Vibe 105.4, number 1 desi music station. Aapke honton par muskurahat likhna hai mera kaam. Sayyid Arshad having a license to chill hai mera naam. Believe me, I am a liar. Hai na?

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus a 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800 Jugasta now. Jugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
3: यही तो गम है।
2: दोस्तों, ये जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है तो लोग बाग अजीब अजीब मैसेज भेजने लगे थे, जुमा मुबारक, मंडे मुबारक, अब तो हद हो गई। एक साहब ने लिखा कि मेरी तरफ से आप सबको ये तपती गर्मी की हार्दिक शुभकामनाएं, खुदा आपको ऐसी गर्मी सहन करने की शक्ति दे। अब बताइए मैं क्या जवाब दूं।
4: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं एक अपने शो के दूसरे लिंक में काम की बात करने लगा हूं, और ये इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि मेरे शो में तमाम खुराफाती बातें होती हैं और उन खुराफाती बातों पर नज़र न लगे, इसलिए मैं अब एक काम की बात करने लगा हूं। ये अलग बात है कि वो इत्तफाक से वो काम की बात कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं जब आमतौर पर ड्राइव कर रहा होता हूँ, जब ही सोचता हूँ, और ये भी एक जोक है वैसे कि मैं भी सोचता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में आ रहा था कि इंसान जब हाथ की लकीरों में फ्यूचर ढूंढने लगे तो समझ लेना चाहिए कि इंसान की बाजुओं में ताकत और दिल में यकीन विश्वास खत्म हो गया है। दोस्तों, आपने वो शेर सुना होगा कि हाथों की लकीरों से फैसले नहीं होते, अज़्म का भी रिश्ता है ज़िंदगी बनाने में। हमें कर्म करना पड़ता है और कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है, और जो लोग सिर्फ फल पर यकीन रखते हैं, कर्म नहीं करते, फेल्योर उनकी तकदीर बन जाती है, वो लोग नाकाम और हारे हुए लोग होते हैं। इसलिए दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मुस्कुराहटों के सफ़र की तरफ उड़ान भरेंगे और यादों को पहले याद करेंगे, बचपने को टटोलेंगे, क्योंकि जब हम यादों को याद करते हैं तो दिल से मुस्कुराते हैं, और जिन लम्हों को हम जीकर आ चुके होते हैं, एक बार फिर से उन्हीं लम्हों को जीवंत जी पाते हैं। तो चलिए मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, अब आप यहां से शुरू कर सकते हैं खुराफात शैतानी लेकर अरशद का नाम। व्हाट्सएप नंबर है 0508791054। एंड यस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी, आई एम अ लायर, है ना।
1: शाम का स्टार्ट थोड़ा अजीबोगरीब खबरों के साथ, ये है शारजा से शुरू।

0: स्टोरीज, गॉसिप और थोड़ी मस्ती। अरशद के साथ शाम बनेगी कुछ खास।
1: फेमस, फेमस 7 to 10
2: विद सईद अरशद।

0: बातें अपने गाने अपने लोग Vibe FM 105.4 The UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205355 today.
1: Stories जो आपकी रात को यादगार बनाए. This is the famous 7 to 10 with Syed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
1: यही तो गम है.
2: और आयशा जो कि लाहौर की रहने वाली हैं, लिखती हैं कि अरशद साहब, मुझे आपकी ये बात के If you have any problem, please come to me. I will increase that. बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ इसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये कि किसी को कोई भी टेंशन है तो मुझसे कहिए, मैं उससे भी बड़ी टेंशन देकर पहले वाली आपकी टेंशन कम कर दूंगी. सलूट आपको.
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन.
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और आयशा, वैसे तो आपने बिन मांगे एक सलाह दी है, लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है सलाह देने का. एक मेरे दोस्त हैं, उनसे उनके एक दोस्त ने कहा कि मेरी हाइट बहुत कम है और कुछ सब कुछ कर लिया है, मैं लंबा नहीं हो पा रहा हूं, कोई मशवरा, कोई राय, कोई सलाह हो तो बताओ. तो मेरे दोस्त ने अपने दोस्त को सलाह दी कि तुम ऐसा करो, तुम लटका करो. अब वो साहब जो हैं पंखे से लटक गए और ऊपर से मेरे दोस्त का नाम लिखकर चले गए. अब थाने से मेरे दोस्त को बार बार फोन आ रहा है. तो इसलिए दोस्तों बी अवेयर, है ना, जो भी मशवरा दें सोच समझ कर दें. चलिए दोस्तों, आप तो मुस्कुराइए, मेरा काम आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है. आपकी इस सफ़र को जो आप दिन भर की थकावट के बाद इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, इसको आसान बनाना है, इसको थोड़ा सा ईज करना है और लाइटर वेन की बातें करके आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है. क्योंकि बहुत सारी दोस्तों के किस्से, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पत्नियों के किस्से जब मैं इस शो में आपके लिए डिलीवर करता हूँ, आपको बताता हूँ, तो कुछ ना कुछ किस्से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किस्सा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा होता है और आप उसको देखकर और ज़्यादा खुश होते हैं, आपके चेहरे और चमक जाते हैं, और जब आप मुस्कुराते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं. और मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि मेरी ये ख्वाहिश बल्कि कोशिश कि सबके सब गम ले लूं, हर होंठ पर मुस्कुराहट लिख दूं. तो आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और दोस्तों आप यूं ही जारी रखें शैतानी लेकर अरशद का नाम. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0508791054. एंड यस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी, आई एम अ लायर, है ना.

0: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
1: यही तो गम है।
0: और खालिद मसूद जो कि सरगोधा पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लिखते हैं कि अरशद भाई, बचपन में जब मैंने पहली बार जर्मन शेफर्ड का नाम सुना था तो सोचा था कि कोई गैर मुल्की साइंटिस्ट होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कुत्ता होता है। ऐसे बहुत सारे वाकियात हैं। गुड, आई लाइक दिस।
2: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
0: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।
1: डिसिप्लिन हो या ड्रामा, ट्रेडिशन हो या ट्रेंड, ये है द असली जनरेशनल क्लैश, बाप वर्सेस बेटा।
0: और खालिद मसूद साहब मेरे एक दोस्त हैं, उनका तो इससे भी ज्यादा हद हो गई। वो तो इतने स्मार्ट हैं कि वो ब्लैकमेल का मतलब काला आदमी समझते हैं। ये बिल्कुल वही वाकया हो गया ना कि एक साहब ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया कि गली में गोलियां चल रही हैं कि टैबलेट्स आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट। और एक और इंडिया में कवि हैं सुरेंद्र शर्मा जी, जो कि मेरे बहुत पसंदीदा हास्य कवि हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में एक ये सेंटेंस, एक लाइन में, एक लफ्ज में, एक सेंटेंस में ये बात बताओ कि बालकनी में लड़की अकेली खड़ी हुई है, तो उसके जवाब में एक स्टूडेंट ने लिखा मिसअंडरस्टैंडिंग। चलिए दोस्तों, हमारा काम तो मुस्कुराहटों के सफर को और यादगार बनाना है, आपके चेहरों को खिलाना है मुस्कुराहट आपको देकर, आपकी जो ये थकावट है इस वक्त आप जो ट्रैवल कर रहे हैं इस थकावट को खत्म करना है और आपके चेहरे को चमकदार बनाकर आपके घरों की तरफ आपको मुस्कुराते हुए लेकर जाना है। तो अब आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम। एंड यस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी, आई एम अ लायर, है ना।

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। YBFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: शाम की गुफ्तगू, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
2: यही तो गम है।
1: और आलोक श्रीवास्तव जो कि पटना बिहार के रहने वाले हैं, लिखते हैं कि अरशद भाई, हर सफल आदमी को अपनी कामयाबी के रास्ते में एक महिला, एक औरत जरूर मिलती है, बस अगर आप उससे बच गए तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यह आपने नई डेफिनेशन बताई है।
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
1: Vibe FM 105.4, नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग अ लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।
2: पुरानी यादें, नए बीट्स, सैयद अरशद के साथ मैशअप माशूका, मैशअप माशूका।
1: और दोस्तों, एक समी जान है जिन्होंने एक मैसेज किया था मुझे फ्राइडे को, और समी साहब आपके इत्तेफाक से फ्राइडे को मैं मैसेज नहीं देख सका, मैंने आज देखा। और आपने जो वॉइस मैसेज भेजा है, आपने उसमें कहा है कि ये यूं कहूं कि आपकी बात का लब्बो लबाब या सार ये है कि आप ये कहना चाह रहे थे कि मैं जो औरतों से, खासतौर से बीवियों से पंगे लेता हूं वो ना लूं। आपने ये मुझे मशवरा दिया है कि बिजली के तारों में हाथ नहीं डालना चाहिए वरना करंट तो हर हाल में लगता है। आपने मुझे डरा दिया मेरे भाई। और समी साहब, मुझे लगता है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी वाइफ आपके साथ में बैठी हैं और वो आपको ज़बरदस्ती आपसे ये मैसेज लिखवा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये मैसेज 440 वोल्ट की करंट के जरिए ज़बरदस्ती लिखा है और आप अपनी वाइफ को ये बताना चाहते हैं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक साहब मुझे मिले थे और वो कह रहे थे कि उन्हें अपनी वाइफ बहुत अच्छी लगती हैं, वो अपनी पत्नी पर फिदा हैं। तो मैंने एक शेर कहा था कि कितना अजीब शख्स है पत्नी पर फिदा है, कितना अजीब शख्स है पत्नी पे फिदा है और उस पर तुर्रा ये कि अपनी पे फिदा है। आधा भर से चलिए समी साहब, आपने मैसेज किया और मुझे अच्छा लगा और आप ऐसे ही ये सिलसिला यूं ही जारी रखिएगा। फिलहाल आप दोस्तों मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4, नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम। व्हाट्सएप नंबर है 0508791054। और यस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी आई एम अ लायर, है ना।
0: शाम का स्टार्ट थोड़ा अजीबोगरीब खबरों के साथ, ये है शारजा से शुरू।

0: जॉब चाहिए जो चले भी और कमाए भी। यल्ला विन पे बाइक राइडर्स की हायरिंग हो रही है। अर्न अप टू 3,500 दिरहम्स फिक्स सैलरी प्लस वीकली सेल्स इंसेंटिव्स। अगर आप स्मार्ट रिस्पॉन्सिबल हो और यूएई का बाइक लाइसेंस है तो ये जॉब आपके लिए है। अभी व्हाट्सएप करें 0507564894। सीवी ईमेल करें info@yallawin.pro पे। यल्ला विन, वेयर शॉपिंग मीट्स प्राइजेस।
1: Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
3: यही तो गम है।
2: और रोशन अली जो कि कराची पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लिखते हैं कि अरशद भाई जब आप बीवियों का जिक्र करते हैं मुझे अच्छा लगता है, और इसलिए अच्छा लगता है कि आपके बहुत सारे किस्से जो होते हैं उनको मैंने अपनी बीवी के साथ जिया है। मैं जानता हूं कि कितनी ख़तरनाक होती हैं ये बीवियाँ। एक मेरा दोस्त है अरशद भाई, उसकी बेगम की नींद में चलने की बीमारी का जैसे ही उसको पता लगा तो मेरे दोस्त ने अपने घर की छत की सारी मुंडेरें तुड़वा दीं और प्लेन कर दिया। इसे कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। जिंदाबाद।
4: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।
5: वार्निंग, पीवी ऑन ड्यूटी, हस्बैंड संभल जाओ, ये है पीवी अलर्ट।
2: वैसे रोशन अली साहब, मैं अक्सर कहता हूँ और मैंने कई बार कहा है, आपने सुना भी होगा, कि अगर शैतान की बीवी होती तो शैतान इतना बड़ा शैतान नहीं होता। और मैंने एक दो बार ये भी आपसे कहा है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। ये बहुत ही कड़वा सच है। और इसमें एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि बेचारे मासूम मर्द ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ स्त्री उनका हाथ पकड़े, लेकिन वाइफ पकड़ती है उनकी नस, जो वक्त वक्त पर ऐसे दबाती हैं कि बेचारा मासूम मर्द बिलबिला जाता है। मेरे शो का मकसद बेचारे कवारे लोगों के दिलों में शादी के लिए दहशत पैदा करना नहीं है, मेरा काम तो दोस्तों मोहब्बत करना है, मोहब्बत को बढ़ावा देना है, आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है, आपके लिए खुशियां बटोर कर लाना है, और वो तमाम खुशियां आपके लिए परोस देना है ताकि आप मुस्कुराएं और जिन लम्हों को आप मेरे साथ गुजारें वो लम्हे आपके यादगार मजेदार बन जाएं। आप सुबह उठें, सूरज को देखकर मुस्कुराएं, सूरज से आंख मिलाएं और अपने मंजिलों की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों अब बैक टू बैक तीन गाने, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों अब यहां से मुस्कुराहटों के सफर को विराम देंगे और अब आइए मोहब्बतों के सफर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जहां हम हुस्न को और हसीन बनाते हैं और हुस्न को और खूबसूरत बनाकर अपने दिल की धड़कनों को गुदगुदाते हैं, और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे ये एहसास कराते हैं कि हम बस उसी से मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत को और अपने दिल की धड़कनों में बसाते हैं। तो बैक टू बैक तीन गाने, गानों के उस पार मोहब्बतों के फसाने। तो सुनते रहिए वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। गुड इवनिंग।
4: यही है प्यार वाली मोहब्बत।

0: मूड बोले
1: झुमका गिरा रे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: YFM 105.4 UAE का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: स्टोरीज जो आपकी रात को यादगार बनाए। दिस इज द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद।
1: वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग अ लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, शो का अब तीसरा घंटा शुरू हो चुका है जिसमें हम बातें मोहब्बतों की करते हैं, जिसमें हम हुस्न को और हसीन बनाते हैं और खूबसूरत हुस्न को बनाकर अपने दिल की धड़कनों को गुदगुदाते हैं, और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे इस बात का और एहसास कराते हैं कि हम फकत बस उसी को चाहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं और उसी पर मरना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तहसीन मुनव्वर भाई का एक शेर है कि सूरज से भी आंख मिलाया करते थे, सूरज से भी आंख मिलाया करते थे, तुझसे मिलने धूप में आया करते थे। बैक टू बैक तीन गाने, गानों के उस पार मोहब्बतों के फसाने। तो सुनते रहिए वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग अ लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।

0: evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
1: Vibe FM 105.4, number 1 Desi Music Station. Show ka naam hai The Famous 7 to 10 with Saeed Arshad. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। शो के तीसरे घंटे में दोस्तों अब हम बातें मोहब्बतों की करेंगे, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे महसूस करेंगे और कुछ यूं कहेंगे कि इश्क

की आग जब भड़कती है, बर्फ में आग लगती है, अंधेरी रात चमकने लगती है, सूरज निकलता है तो बारिश बरसती है, बादल जुल्फ में सिमट आते हैं और मौसम चांद को गर्माते हैं, हुस्न बेपरवाह हो जाता है, इश्क की आगोश में सिमट आता है, आवाज चुप हो जाती है, खामोशी सुनाई देती है, अंगड़ाई इंद्रधनुष बन जाती है, मौसमों को वो बहकाती है, प्यार का पहला खत लिखा जाता है और दिल से दिल जुड़ जाता है, मिठाई नमकीन बन जाती है, जीवन को वो रंगीन बनाती है, प्यार का अलख जगता है, इश्क हुस्न के नाज उठाता है और प्यार का सूरज चमक जाता है, दिल से दिल मिल जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं, जीवन सफल हो जाता है, जीवन मुकम्मल हो जाता है ना।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूए का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। Vibe FM 105.4, number one desi music station in UAE.
1: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges. Offering breathtaking views, you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall. Your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development .com or call 0460205355 today.
2: शाम की गुफ्तगू, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, The Famous 7 to 10 with Saeed Arshad. Saeed Arshad.
3: Vibe FM 105.4, number 1 desi music station. Show का नाम है The Famous 7 to 10 with Saeed Arshad. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। शो का तीसरा घंटा दोस्तों बातें मोहब्बतों की कर रहे हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे महसूस करके। कुछ यूं कहेंगे कि एक दिलकशो मरमरी एहसास हो तुम, हर पल मेरे दिल के बहुत ही पास हो तुम। जब भी मैं तुम्हें सोचता हूँ, बस तुम्हें अपने पास पाता हूँ और मैं तुम्हारे पास चला आता हूँ। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारे अंदाज जैसे गूंज उठी हो शहनाई। झूमने लगे हूँ साज, तुम्हें देखकर बदल जाते हैं मौसम। तुम्हारी जुल्फों को छूकर हवा जो बहती है मध्यम मध्यम। सोचकर ही बहक जाता हूँ मैं, बहक कर महकता हूँ और चहक जाता हूँ मैं। सोचता हूँ कि जब तू मुझको छुएगी, सोच मुझ पर क्या बीतेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत खास हो तुम, मेरे जीवन का मधुर मादक, दिलकशो मरमरी एहसास हो तुम।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। YBFM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: आपकी रात को यादगार बनाए। This is the famous 7 to 10 with Syed Arshad.
1: Vibe FM 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। शो के तीसरे घंटे के पहले लिंक में दोस्तों मैंने जो पंक्तियां पढ़ी थी वो कुछ यूं थी। तहसीन मनव्वर भाई का कलाम के सूरज से भी आंख मिलाया करते थे, सूरज से भी आंख मिलाया करते थे, तुझसे मिलने धूप में आया करते थे। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी शो में शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टिकटॉक पेज को फॉलो कर लें। कोई राय और मशवरा देना चाहें तो आप हमारे इंस्टा से जुड़ सकते हैं। दोनों की आईडी सेम है, वाइब FM VIBEFM 1054, या फिर आप मेरे पर्सनल इंस्टा से जुड़ सकते हैं या मेरे टिकटॉक पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आईडी है सैयद.अरशद SAYYED.ARSHAD007, और तमाम सोशल मीडिया पर दोस्तों मेरी यही आईडी है। तो आज के द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station.

0: शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: आप सुन रहे हैं वाइब FM 105.4।

0: You're listening to YBFM 105.4.
1: Thank you.

नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100, बाकी एवरेज तू है सैवेज, बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

चाह के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।